इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: आ रहे हैं यलगार घराने के दुबई से अमानत अली।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

देखिए माहौल तो बदल चुका है क्योंकि जोश तो नहीं है, पर मैं आ चुकी हूँ आपसे बात करने। 90.4 रेडियो चुनाव पर आगाज हो चुका है कुछ थोड़ा जल्दी ही शो चुनाव बीट्स का ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM।

91.4 रेडियो चुनार प्रयाग आ चुका है शो चुनार बीट्स का फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट। मैं हूँ दीवा और थोड़ा जल्दी जब आती हूँ थोड़ी ज़्यादा बातें कर लेती हूँ। मौसम देखिए ऑसम हो चुका है और इस मौसम के साथ बातों को और बढ़ाने में थोड़ा मज़ा आ जाता है। और ये सफ़र जो है मुझे लगता है कि आपके बगैर अधूरा है। तो एंटरटेनमेंट तो है, इन्फॉर्मेशन है, बट आपकी बात एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए। 8 8 9 0 4 9 0 4 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये सफ़र मुश्किल नहीं है अगर आपका साथ बराबर।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

बीच ऑन बीच जो चुनाव बीच आप एंजॉय कर रहे हैं ऑनलाइन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम ये सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि बहुत साइड से ट्रैफिक को अलो किया जा रहा है, पर आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बस यू हैव टू बी केयरफुल एंड बी वेरी वेरी वेरी कॉशियस. नहीं ईजी लगता है, रोड ईजी नहीं है, क्योंकि बिना बताए रोड खराब हो जाए और फिर मुश्किल में पड़ जाए. सो जरूरी गाइडलाइंस के मुताबिक ही आप अपने

प्लान बनाया। और आपको बता दें कि वो चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी टू वे ट्रैफिक है, सो कंडीशन अभी रोड की सही है तो आप आराम से जा सकते हो, बट सीट बेल्ट वो कौन बताएगा, वो तो हम ही बताएंगे। और मुझे लगता है कि हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हमारी ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स है वो है। सो डेफिनेटली जब हम इतनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, हम सीट बेल्ट लगाते हैं, ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करते हैं, तो हमारी जान तो बच जाती है, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज भी आती है हमारी सोसाइटी में कि एक हीरो जब बनना हो ना तो हीरो वाले काम करने होते हैं, ना कि हम ओवर स्पीड से या फिर गलत जगह पे ओवरटेक करना, जो कि बिल्कुल गलत है और फिर हो जाती है हड़बड़ी में गड़बड़ी। सो गड़बड़ी नहीं करने का जो भी है, अपने दिमाग को शांत रखने का, और शांत दिमाग ये समझ लीजिए कि लाइफ में हमेशा हमें पावरफुल बनाता है। देखिए मेरे लिए आप आए और सिग्नल तोड़े ये तो मैं नहीं चाहती, इस आने से तो बेहतर है ना ही आए, बट जब भी आप आए तो फ़ोन आप कीजिए और बताएं मुझे कि ये प्यार जो आप आए हैं और आप सही इंटेंशन से आए तो मज़ा काफ़ी आए हैं। तो फिलहाल तोड़िए ना, हम तो दिलों को जोड़ने वाला काम करते हैं, और जुड़ते कैसे हैं भाई, अगेन 8899-0494 एक्सपोर्ट्स आप कीजिए और शो चिनार बीच का हिस्सा बन जाए।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

शो चुनार भी सब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड आज शो पे हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज स्कूल्स, आई मीन दे आर शेपिंग फ्यूचर ऑफ आर यंग माइंड्स, आर यूथ, और जो हमारा आने वाला कल है वो कहीं ना कहीं बेहतर कल की ओर जा रहा है। तो महसूस ये हो रहा है मुझे कि आर्मी गुडविल स्कूल जो है, जिनकी वजह से हमारे जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके पास मल्टी स्किल्स होते हैं, उनके पास मल्टी वो फील्ड्स होते हैं जहाँ पर वो अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं, वो अपना कल बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो हम दूर से पहचानेंगे कि ये आर्मी गुडविल स्कूल का बच्चा है। और मैंने जब बात की कुछ बच्चों से, एंड दे आर लाइक, कोई मुझको यूँ मिला है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आने वाला कल सवर जाएगा, और क्योंकि कि तालीम के साथ साथ जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हम पार्ट लेते हैं और बाकी फील्ड्स में भी हम इन्वॉल्व हैं, सो हम ऐसा नहीं लगता हम कहीं पर रुकेंगे। सो वी आर लाइक मोर पुश टूवर्ड्स आर स्टडीज, टूवर्ड्स अदर फील्ड्स, स्पोर्ट्स, इवन लाइक म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको एक्स्ट्रा मिलती है। सो दे आर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्व्स। सो मुझे लगता है आर्मी गुडविल स्कूल्स के बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्पी होते हैं। आपको क्या लगता है मुझे बताइए, शो कैसा बन जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी गुडविल स्कूल्स। आप 8899049044 कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं।

सोचना और भी इतनी सारी बातें, और बात किस बारे में हो रही है तो मैं आपको बता दूंगी। टॉकिंग अबाउट एच स्कूल्स का जो प्रदर्शन है, कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स सोसाइटी, क्योंकि हर एक चीज़ एक पैकेज जो है आपको आर्मी कोडो स्कूल्स में मिलता है। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू पेरेंट्स, टू टीचर्स, टू स्टूडेंट्स, अलुमनाई स्टूडेंट्स, दे वर लाइक कि हमें पूरा एक वो कह सकते हैं ऐसा कोई मलाल भी नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है ज़िंदगी में। सो दे वर वेरी वेरी वेरी थैंकफुल टू देयर स्कूल्स कि हमें उन स्कूल से वो सब चीज़ें मिली है जिससे आज हमें रियलाइजेशन होती है दैट हमने कुछ खोया नहीं। सो आर्मी गुडविल स्कूल्स दे हेल्प स्टूडेंट्स टू शेप देयर फ्यूचर एंड दे हैव मल्टी स्किल्स, दे आर मल्टी स्किल्ड, सो दे नो व्हाट टू डू। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सो क्या है एक्स्ट्रा इन आर्मी कुटुल स्कूल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आप भी शो का ऐसा बन सकते हैं 8899049904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चिनार बीस का ऐसा बन जाए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

आरजे बीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम। Show Chunar, we sab enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. We are talking about success of Army Good Rural Schools. Army Good Rural Schools, how they are shaping future of our young minds, our youth. So, baat kar rahe hain hum kya hai उनकी स्टोरी जो हम देख रहे हैं, कैसे आर्मी गुड रूरल स्कूल्स का एक अलग ही प्रदर्शन रहता है एक बच्चे की लाइफ में। और अगर हम देखें आर्मी गुड रूरल स्कूल्स के बच्चे, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, जब हम उन्हें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, वी आर लाइक कि येस, इफ़ वी हैव टू चूज़, वी हैव टू चूज़ बेस्ट फॉर आवर सेल्फ एंड आर्मी गुड रूरल स्कूल्स, दे आर द बेस्ट, दे मेक फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी सिक्योर, वेरी सिक्योर। आई मीन कोई भी डाउट नहीं होता है क्यों नहीं हम उस स्कूल को चूज़ करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, और आपका क्या है इस चीज़ पर राय मुझे बताइए। शो कैसा बन जाए 8999904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चनार बीट्स कैसा बन जाए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दे
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

शो चुनाव बीच और बात हो रही थी आज आर्मी कुटुर स्कूल्स के बारे में और क्या सक्सेस स्टोरी है और कैसे आर्मी कुटुर स्कूल्स अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग दैट लाइक कि हमें आगे बढ़ते जाना है और हमने बच्चों को एक सही फ्यूचर एक सही डायरेक्शन देनी है। सो फिलहाल के लिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस फिर से वापस आऊँगी। शो म्यूज़िक ऑन डिमांड कुछ ही टाइम स्टार्ट होगा बराबर आप 2 बजे तक शो म्यूज़िक ऑन डिमांड इन्जॉय करेंगे। आई नो इट फील्स लाइक एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मौका पे चौका आपने मानना है। सो मौके पे चौका 8899049046 व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूज़िक ऑन डिमांड का ऐसा बन जाए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: नोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: I can't wait because she has absolutely no idea. Let's go.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar beats with Harshi Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Ok. Ton mari? Mais John. Le perdu me regue.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: तो मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
3: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल
4: दिला दीजिए ना।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल,

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: モニーカ
1: ー वो आ गया देखो देखो वो आ गया

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

चंद्र, चिन्ह, परम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सारी ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ सा

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: ए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खटरिया, ओ सवरिया।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, तारा रा रा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यही है। क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
1: सौ बातों की एक बात यही है।
0: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: ना यूं ही साथी
1: भाई बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी
1: शाम। बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।